0: ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म अद्वितदेवता ब्रह्म इत्यार्थं गायत्रं छन्दं परमात्मं स्वरूपं आयुज्यं विनियोगः ओंकार में तीन अक्षरों के योग है अ ए ओ लेकिन उच्चारण करते समय अल्र के वो एक ही ए ओ अयोत भारतीय साया वरट
1: में ओम ही
0: लन
1: भारतीय सुमता
0: यम गण नम
1: भारतीय
0: भन्ने
1: आध्यात्मिक
0: घडदश जब गडदश
1: एक
0: ख ठ ठ
1: चटतव
0: ओंकारश्चाधर
1: कपय
0: भावेरो
1: श्रमण पुरा